0: नेपाल टेलिकम को फाइबर इंटरनेट नया चढ़ान करना तथा मरमत करना घरमै बसी बसी 198 डायल गरे पुग्छ।
1: नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।